आप सबना दा निक्की जी कौर जिंद दे जीवन विच जी आया नू। अज जिंद कौर दा उस दिन नवे स्कूल विच पहला दिन है। वो बस निकलन तो पहला अपने सवेर दा नितनेम कर रही है। वो सोचती सी कि अज सब कुछ ठीक रहेगा, पर जिंदगी एनी सौखी नहीं। जिंद कौर तुहानू एक आम जी कुड़ी जरूर लगेगी, पर आम दी परिभाषा तो कितने दूर है। जिंद कौर इन्ना पाठ करती है, इन्ना नाम जपती है कि सचमुच उसके कोल रिद्धियां सिद्धियां हन कि वह दूजे लोगों विच सफर कर सकती है।

0: अरे
1: बस एक औरत है। हा एदे नाल तां मैं इकल्ला निपट लवांगा।
0: ओ ना निपटा सकिया, बल्कि मैं ही जल्दी नाल ओनू निपटा दिता।
2: वाह, लगता है ए जंग करना जानती है पर मैनू नहीं हरा सकती।
0: गुरु साहिब जी ने आप मैनू बल बख्शिया। मैं एक नू मार मुकाया ते नाल ही होर जने मेरे ते भारू हो गए ते नाल दे नाल ही उन्हां नू भी खत्म कर दिता। मैं एक पल लई भी गुरु नू नहीं विसारिया। मैं बयान नहीं कर सकती कि वह कहो जिहा महसूस हुंदा है जो कोई इन्नी बिपता विच होवे ते अपने गुरु का ध्यान धार रहा होवे। गुरु जी की शक्ति ते किरपा हेठ होना मैं बस ये कह सकती हाँ कि मैं इन्ना जानती सी कि इसका कोई फर्क नहीं पैंदा जो मेरे नाल हो रहा है। मैनू महसूस होया कि मैं इकली नहीं हाँ। मैं चारे पासों रोशनी नाल किरी हुई हाँ। अखीर वह मेरे ते हावी हो गए ते मैं निहत्थी हो गई। उन्होंने मैनू भी सुलगदी हुई अग विच सुट दिता। मैं अंत तक लड़ती रही। फिर मैं अपने आप नू इस मंडल विच पाया। गुरु साहिब पहलां तो ही इत्थे सन, मेरा इंतजार कर रहे सी अपनी निग्गी गलवकड़ी नाल।
3: मैं हुण देख सकती हाँ, दुनिया नू लगता है कि तुसी बड़े दुख दा सामना करता, पर तुसी ता कुछ होर इसदे बिल्कुल उल्ट महसूस किता।
0: हुण तुहानू सब समझ आ गया ते तुहाडे नाल भी यही गल है। जदों तुसी गुरु पिता जी नू पुकारिया ता तुहानू पता ही नहीं सी कि तुसी की करना है, क्योंकि तुसी अपने आप नू असमर्थ समझिया। हुण तुहानू किवें दा महसूस हो रहा है?
3: मैनू एवें लग रहा है कि मेरे कोल दुनिया दी सारी शक्ति होवे।
0: ये शक्ति गुरु दे पासों ही प्राप्त हुंदी है। साडे नाल अपना मेल जरूर रखियो सिखी विच रह के।
4: उदो जिन कौर गुरु गोबिंद सिंह जी दे सुपुत्रां नू अपने सामने प्रकट होंदे देखदी है, उन्हां दे पिछे होर भी काफी शहीद सिंह हन।
5: तुहाडी सच्ची शरदा दे पलां विच असीं तुहाडे नाल हां ते तुहाडे लोड़ दे वेले असीं तुहाडे नाल खड़ांगे। कदे लुके हो ना, दिखा दो दुनिया नू कि तुसीं कौण हो।
3: मैनू नहीं लगदा कि मैं दोबारा करजी दरांगी।
5: हा हा हा, शाबाश। पर जे तुहानू कदे डर लगे भी, उदो समां है योधियां दीआं वारां गाउण दा।
3: अच्छा, ओह कीहड़ी वार है?
5: हा हा हा, साडे कोल बहुत सारीआं वारां ने।
0: मैनू लगदा है इस समें ये वार साडे गाउण दे लई बिलकुल ठीक है।

0: सिखी दी ए निशानी। शब्द गुरु रामदास जी। व्याख्या जगदीप सिंह। चित्रकार प्रदीप सिंह।
1: सिमर सिंह, कृपा कौर, उठो उठो, की थानू वधिया नींद आई?
2: अखीरली चीज जेड़ी मनु याद है, मम्मी जी ने करो बेनती गोना शुरू ही किता सी ते मेनू नींद आ गई।
3: अजीत वीर जी, मेनू बड़ा चंगा लगता है जदो तुसी मेनू जगांदे हो।
1: आओ वेखिए पहला कौन स्नान करके पाठ करन ली तैयार हुंदा है।
2: मैं जित जावांगा।
3: मम्मी जी, की मैं बबल पात ले सकती हां?
1: आओ पहला सिमरन करिए, फिर कृपा कौर तुसी आज जपजी साहिब करो, मैं जाप साहिब करांगा, सिमर सिंह तुवे प्रसाद सवाइये करेंगे।
2: मैनू बहुत भूख लगी है, आओ छेती छेती पाठ करिए ताकि मैं नाश्ता कर सका।
3: कि मैं अरदास भी कर सकती हूँ?
1: आओ अनंत साहिब करिए,
2: मैं उच्ची उच्ची गावांगा।
3: मैं हर वेले कीर्तन सुनना पसंद कर दिया।
1: वाहेगुरु जी दा शुक्र है जिसने बास्केटबॉल दी खेड बनाई है। मैनू बास्केटबॉल खेलना बहुत पसंद है।
2: शुक्र है मेरे कोल एवेजे बूट हन, मैं किन्नी उच्ची छाल मार सकदा हां।
3: मैं शुक्र कर दिया कि मेरे कोल तुहाडे वर्गे वीर हन।
1: ओ वेको, गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पिछे पंच प्यारे खड़े हन, आओ ध्यान नाल हुक्म सुनिए।
2: मैनू उना दिया वड़िया किरपाना बहुत चंगिया लग दिया हन।
3: एक दिन मैं भी पंच प्यारियां विच शामिल होवांगी।
1: इस शब्द विच एह सिख्या मिलदी है कि सानू वाहे गुरु नू सदा याद रखना चाहिदा है।
2: चलो सारे इकट्ठे शब्द गाइए।
3: मैनू तबला बजाना बहुत पसंद है।

ये कहानी पसंद आई होवे तो इस तरह दिया होड़ी वीडियो सब्सक्राइब करो।